ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि मंगल से बुध तक यूक्रेन पर किए जाने वाले बड़े रूसी हमले में 25 अफराद हलाक और 100 के करीब जख्मी हुए हैं। जेलेंस्की ने बुध को एक वीडियो तकरीर में इस हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा, ये एक तरह का वो तोहफा है जो पुतिन ने खुद को अपनी सालगिरह के मौके पर दिया। बच्चों का खून और लोगों का कत्ल। वाजह रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सालगिरह बुध को थी। जेलेंस्की ने कहा कि एक मिसाइल शमाली इलाके चर्निहियो में एक रिहायशी इमारत को बराह रास्त लगा। उन्होंने कहा कि 19 अफराद हलाक हुए, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। सदर ने निशानदेही की कि इस हमले में बगैर पायलट वाले तैयारों के साथ साथ कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। रूस की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि उसने तंबाकू बनाने वाली एक जापानी कंपनी की यूक्रेन में कायम एक जेली फर्म पर हमला किया है, जो बकौल रूस के यूक्रेनी अफवाज के लिए गोला बारूद तैयार कर रही थी। जापान टुबेको इंटरनेशनल JTI ने इस हमले की तर्दीद की है। उसने NHK को तहरीरी तौर पर यह भी बताया कि हमारे तमाम मुलाजमीन महफूज हैं। रूस की वजारत दिफा ने बुध के रोज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उसने यूक्रेनी दिफाई सनत के इदारों के साथ साथ बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और बहरी जहाजों पर जमीनी, बहरी और फजाई हथियारों और ड्रोन्स के साथ जबरदस्त हमला किया है। इसमें वस्ती यूक्रेन के पोल्टावा इलाके में JTI का तंबाकू प्लांट भी शामिल था। JTI के ऑफिशियल बयान के मुताबिक JTI तंबाकू की मसनूआत तैयार और फरोख्त करती है और कभी भी फौजी पैदावार में शामिल नहीं रही। बयान में यह भी कहा गया है कि फैक्ट्री पर मुतअद्दिद मौके पर हमला किया गया था और ये कि हमलों से पहले प्लांट में काम मुअत्तल कर दिया गया था। बयान में कहा गया कि

0: すみません、忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
0: わかりました、ありがとうございます。
1: さあ行こう。
2: आज के सबक का कलीदी जुमला है, निंजा म्यूजियम तक कैसे जाएंगे?
0: निंजा हकबुत्सुकन मादे दो इत्तरा ई देसु का?
2: अगर आप इसे याद कर लें, तो इसे इस्तेमाल करते हुए रास्ता पूछ सकते हैं।
3: निंजा हकबुत्सुकन के मायने है निंजा म्यूजियम, मादे यानी तक, और दो इत्तरा ई देसु का मतलब है कैसे जाएंगे। आज का नुक्ता रास्ता पूछने से मुतालिक है। इसके लिए अपनी मंजिल के मकाम के बाद हर्फ़े जार मादे लगाकर उसके बाद दो इत्तरा ई रिस्का लगाएं। इत्तरा फेल इकू यानी जाना की शर्त या शक्ल है। इस जुमले को इसी तरह याद कर लेना बेहतर होगा।
2: तो सामने सुनिए और दोहराइए।
4: दो इत्तरा ई रिस्का, निंजा हकबुत्सुकन मादे दो इत्तरा ई रिस्का,忍者博物館までどう行ったらいいですか？
3: अब रास्ता पूछने वाला एक मकालमा सुनिए।
1: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
3: और अब इस मकालमे की तशरीह।
1: すみません。
2: अरे सुनिए, माफ कीजिएगा।
3: ये अल्फाज किसी को मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: किंकाकुजी मादे दो इत्तरा ई देसु का?
2: किंकाकुजी तक कैसे जाएंगे?
3: किंकाकुजी क्योटो के एक मशहूर मंदिर का नाम है। इस मकालमे में वहां तक जाने का रास्ता पूछा जा रहा है।
1: 101番の बस に乗ってください।
2: 101 नंबर की बस में सवार हूं।
3: 101番यानी 101 नंबर। बस, बस का जापानी तलफ्फुज़ है, और नोत्ते फेल नोरू यानी सवार होना की ते शक्ल है। नोत्ते कुदासाई कि मैं नहीं हुए सवार हूँ।
2: तो सामीन अब सुनिए और दोहराइए।
4: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
3: अब कुछ दूसरे मकामात के नामों के साथ मशक करें। फर्ज करें आप जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसका रास्ता भूल गए। आप किसी को नक्शे में अपने होटल के मकाम पर उंगली रखकर दिखाते हुए पूछना चाहते हैं कि इस होटल तक कैसे जाएंगे। इस होटल की जापानी है
4: कोनो होटेल, कोनो होटेल।
3: बात का आगाज आनो सुमिमासेन से करें।
1: आनो सुमिमासेन, कोनो होटेल मादे दो इत्तरा ई देसु का? आनो सुमिमासेन, このホテルまでどう行ったらいいですか？
3: अब फर्ज करें आप क्योटो स्टेशन पर हैं और शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं। शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म को कहते हैं
4: शिंकानसेन नो होम, शिंकानसेन नो होम।
3: तो सामीन कोशिश करें।
5: すみません。शिंकानसेन नो होम までどう行ったらいいですか？すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
2: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
3: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम आपको दाएं बाएं वगैरह के बारे में बता रहे हैं। दाएं को कहते हैं मिगी और बाएं को हिदारी।
2: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
4: मिगी हिदारी।
3: सीधा जाने को कहते हैं मस्सुगु। इसे भी दोहराकर मश्क करें।
4: मस्सुगु।
3: अगर किसी से कहना हो कि सीधा जाएं, तो कहेंगे मस्सुगु इत्ते कुदासाई, और अगर दाएं मोड़ने का कहना हो तो फेल मगारू यानी मोड़ना इस्तेमाल करते हुए यूं कहेंगे मिगी नी मगात्ते कुदासाई।
2: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खास ध्यान दें जिसमें माइक रास्ता पूछता है।
6: マイク似合うね。かっこいい。
0: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
0: わかりました。ありがとうございます。
1: さあ、行こう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
2: अब मियां का सफरी हिदायतनामा। कायतो और माइक ने मिए प्रीफेक्चर जाने के लिए हाईवे बस इस्तेमाल की थी। बस के जरिए सफर में कुछ वक्त लगता है, लेकिन ये सफर का सस्ता जरिया है। तो आज का मौजू है जापान की हाईवे बसें।
3: हाईवे बसों के जरिए कई मकबूल मकामात तक बराह रास्त जाया जा सकता है। अगर रात की बस से सफर किया जाए तो सोते हुए सफर करने के बाद इस वक्त बचाया जा सकता है।
2: ये बसें ज्यादातर किन मकामात के लिए दस्तयाब हैं?
3: हाईवे बसों के कई रूट हैं। टोक्यो से नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे बड़े शहरों के रूट मकबूल हैं। इसके अलावा कोहे फूजी, हाकोने और कुसात्सु ओनसेन गर्म चश्मा जाने वाले रूट भी हैं।
2: इनकी सीट की बुकिंग किस तरह होती है?
3: इंटरनेट वगैरह के जरिए टिकट आसानी से खरीदा जा सकता है। बाज बसों में सीट नंबर तक भी तय किया जा सकता है। लग्जरी बसें कुछ महंगी होती हैं, लेकिन उनमें पांव फैलाने की जगह या अलग कमरे जैसी नशिस्तें दस्तियाब होने के बाद सफर ज्यादा आरामदेह हो जाता है।
2: यानी जापान में मुख्तलिफ इलाकों के सफर के लिए बस एक इंतखाब हो सकता है।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 8 अक्टूबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापानी वैज्ञानिक सोआई केन्सो ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक अन्य वैज्ञानिक के साथ इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार जीत लिया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने बताया कि उसने असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए हेनरी बी कागन और सोआई केन्सो को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2026 का नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। अकादमी ने बताया कि कुछ अणुओं के दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो पक्ष होते हैं, लेकिन औषधि निर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को इनके केवल एक पक्ष की आवश्यकता होती है। ये प्रकृति में सामान्य बात है, परंतु प्रयोगशाला में इसे दोहराना संभव नहीं था। इसके बावजूद सोआई ने केवल एक पक्ष को बनाने की विधि का पता लगा लिया। अकादमी का कहना है कि सोआई ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। 76 वर्षीय सोआई का जन्म हिरोशिमा में हुआ था और अब वे टोक्यो विज्ञान विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर हैं। उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से पुरस्कार घोषणा कार्यक्रम में भाग लिया। सोआई ने कहा, नोबेल पुरस्कार मिलने की इतनी अच्छी खबर सुनकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। बेशक ये मेरी जिंदगी का एक सबसे रोमांचक दिन है। लगातार तीसरे वर्ष जापान से किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है। सोआई नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 31वें जापानी हैं। इस संख्या में वे लोग भी शामिल हैं जिनका जन्म और शिक्षा तो जापान में हुई, लेकिन बाद में उन्होंने अमरीकी नागरिकता हासिल कर ली। सऊदी अरब के दो हवाई अड्डों पर हुए हमलों में 3 लोगों के मारे जाने और 30 से अधिक के घायल होने की खबर है। यमन में सरकार विरोधी हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। सऊदी अरब के विमानन अधिकारियों के अनुसार राजधानी रियाद और दक्षिण पश्चिमी शहर अबहा के हवाई अड्डों को मंगलवार और बुधवार को निशाना बनाया गया। अधिकारियों के अनुसार रियाद में एक व्यक्ति की मौत हुई और 8 घायल हुए, जबकि अबहा में 2 लोग मारे गए और 28 जख्मी हुए। हूथी विद्रोहियों के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि उन्होंने हवाई अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन विमानों से हमले किए। ईरान के हालातों के असर से यमन में हूथी विद्रोहियों और सऊदी समर्थित अंतरिम सरकार के बीच तनाव एक बार फिर भड़क उठा है। इस बीच अमेरिका के कई मीडिया केंद्रों ने खबर दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले ईरान पर दोबारा हमले करने पर विचार कर रहे हैं। अटलांटिक पत्रिका ने बुधवार को प्रशासन के अधिकारियों के हवाले से कहा कि व्हाइट हाउस ने रक्षा मंत्रालय से मध्यावधि चुनाव से पहले ईरानी ठिकानों पर हमले के विकल्प तैयार करने को कहा था। अमरीकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने भी बुधवार को बताया कि अधिकारियों के अनुसार पेंटागन ने कुछ दिन पहले अमरीकी केंद्रीय कमान को ईरान में बड़ी सैन्य कार्रवाई बहाल करने की तैयारी करके रखने का निर्देश दिया था। एक्सियोस ने अमरीकी और इजरायली सूत्रों के हवाले से कहा है कि ये कार्रवाइयाँ इसराइल में 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव और अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले हो सकती हैं।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि मंगलवार से बुधवार तक यूक्रेन पर किए गए रूस के भीषण हमले में 25 लोग मारे गए और लगभग 100 घायल हो गए। जेलेंस्की ने बुधवार को एक वीडियो में इस मामले की निंदा करते हुए कहा, पुतिन ने अपने जन्मदिन पर खुद को ये उपहार दिया है। बच्चों की हत्या, लोगों की हत्या। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जन्मदिन बुधवार को था। जेलेंस्की ने बताया कि उत्तरी क्षेत्र चेरनी हीव में एक मिसाइल सीधे एक रिहायशी इमारत से टकराई, जिसमें 5 बच्चों सहित 19 लोग मारे गए। जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले में मानव रहित वायुयानों के साथ साथ कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने यूक्रेन में जापान की एक तंबाकू कंपनी की सहायक कंपनी पर हमला किया है। रूस ने दावा किया कि उक्त कंपनी यूक्रेनी सेना के लिए गोला बारूद का उत्पादन कर रही थी। जापान टोबैको इंटरनेशनल JTI ने रूस के इस आरोप का खंडन किया है। कंपनी ने NHK को लिखित में ये भी बताया कि हमारे सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उसने जमीनी, समुद्री और हवाई हथियारों तथा ड्रोन से यूक्रेनी रक्षा उद्योग से जुड़े उद्यमों के साथ साथ बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और जहाजों पर एक बड़ा हमला किया है। इसमें मध्यवर्ती यूक्रेन के पोल्टावा क्षेत्र में स्थित JTI का तंबाकू कारखाना भी शामिल था। कंपनी के आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है, JTI तंबाकू उत्पादों का निर्माण और बिक्री करती है और सैन्य उत्पादन में कभी भी शामिल नहीं रही है। वक्तव्य में ये भी कहा गया है कि कारखाने पर कई बार हमला किया गया था और इन हमलों से पहले ही इसका संचालन बंद था। कंपनी ने कहा कि सुरक्षा कारणों से वो और अधिक जानकारी नहीं दे सकती, लेकिन उसके सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। यूक्रेन स्थित जापानी दूतावास का कहना है कि हालिया हमले में किसी जापानी नागरिक के प्रभावित होने की कोई खबर नहीं है। जापान के एकाधिकार विरोधी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में जापान फेयर ट्रेड कमीशन JFTC ने 4 प्रमुख जापानी बियर निर्माताओं की सुविधाओं पर छापा मारा है। उन पर बियर की कीमतों में बढ़ोतरी को समन्वित करने के लिए एक कार्टेल यानी अवैध व्यावसायिक संघ बनाने का संदेह है। टोक्यो स्थित आसाही ब्रुअरीज, किरिन ब्रुअरी, सापोरो ब्रुअरीज और संतोरी स्पिरिट्स नामक कंपनियों की घरेलू बियर बाजार में 90% से अधिक हिस्सेदारी है। सूत्रों के अनुसार उन पर थोक विक्रेताओं को बियर भेजते समय उनकी कीमतों में कब और कितनी वृद्धि करनी है ये तय करने की साजिश रचने का संदेह है। उन्होंने कच्चे माल की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2025 में कीमतें बढ़ाई थीं। गौरतलब है कि कीमतें बढ़ाने का समय लगभग एक समान था। ये चारों कंपनियां जापान ब्रूअर्स एसोसिएशन की सदस्य हैं। सूत्रों के अनुसार एसोसिएशन की मासिक बैठकें होती हैं और विभाग अध्यक्ष स्तर के अधिकारियों ने कीमत समन्वय को लेकर गुप्त बैठकें की। इन बैठकों में बियर जैसे पेय पदार्थों का भी जिक्र था। प्रत्येक कंपनी ने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेगी। JFTC ने कहा है कि वो मूल्य वृद्धि की लहर का फायदा उठाने वाले इस कार्टेल से सख्ती से निपटने की नीति अपनाएगा। JFTC इस मामले को गंभीरता से ले रहा है क्योंकि बियर दैनिक जीवन से जुड़ा उत्पाद है और आरोप है कि ये कार्टेल उन कंपनियों द्वारा बनाया गया था जिनकी बाजार में भारी हिस्सेदारी है। अभियोजकों के समक्ष आपराधिक शिकायतें दर्ज कराने की संभावना है। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।